0: ऐसा इन प्रेम धर के
1: गुरबाणी कर पाठ
0: गुरबाणी का पाठ कर रहे हैं
1: ओके उल्टा ही पुत्र जब
0: राम राम पापी निकी मुसलमान की सा देवी मान की कहता
1: त्याग दियो लाख साठ
0: मूर्खताई है समझ करके गुरु नानक की बाणी उल्टाई है छड़का मारा राम राम।

0: संत नार सिंह, मैं संत शब्द नहीं वरतना चाहता पर ता कहना चाहना क्योंकि उसकी पहचान हो जाए। बाबा नार सिंह ने मलेशिया दे विच दूजी बारी हरिमंदर साहब बनाया सी। तुसी अज भी babeke.com पाके देखो तुहानू पता लग जाएगा मलेशिया च बने पहली बारी। फिर उस तो बाद चीमा पिंड दे विच बनिया हरिमंदर साहब। लेकिन साड़ी कौम इतनी कु गर्क चुकी है ए ना सच नू सच कह के राजी है ना किसी को तमन्ना है भी असी कूड़ नू कूड़ ते कह सकी जिहड़ी गल नहीं हो सकती नहीं हो सकती। डिठे सबे थाम नहीं तुत जिहा बदो पुरख बिधाते तू सोया नहीं इस गल ते पहरा दे दे। उस वेले गुरु के सिख इशनान करके अमृतसर साहब की पवित्र धरती तो जिथे जाए वह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। जे केवल बैठन नाल गल होवे ते मुड़ के असी उस बेरी की कदर क्यों करिए उत्थे ते गुरु इक्को दिन बैठा सी। मुड़ के रीठियां की कदर क्यों करिए उत्थे गुरु इक्को ही दिन बैठा सी चला गया उत्थों ते। पर नहीं जिथे जिथे भाई गुरदास जी आखते ने जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ। असी ते गुरु नूं जान ही ना सके। गरीब नवाज दी शो नाल प्राप्त होए श्री सचखंड श्री हरिमंदर साहब। उथों बोता सिंह ते गरजा सिंह दोवें जने इशनान करके वापस आ रहे ने ते रातों रात इशनान करके आए। उन्होंने कोल थोड़ा जा वक्त बच गया। उन्होंने सोचा भी किन्ना चंगा होवे जे सवेर हुंदिया तक आपां कुछ पैंदा तय कर लईए किते ऐसा ना होवे दिन चल जाए ते मुड़के दिने उन्होंने लुके रहना पैंदा सी। ते उह आ गए इत्थे नूर दीन दी सरां तरन तारण साहिब दे लागे। कदे वक्त मिले नूर दीन दी सरां की चीज है ये फिर सांझ पावांगा। सरहंद दियां इट्टां इसे नूर दीन दी सरां नाल जुड़ियां होईयां ने। इहने सरहंद च पट्ठे लाए सन ते इहने उत्थों इट्टां मंगवाईयां सन। गुरु अर्जन पातशाह ने इट्टां मंगवाईयां सन। गुरु अर्जन पातशाह दी इट्टां इहने नूर दीन ने चुके सरां दे विच ला लईयां सन। मुड़ के बघेल सिंह ने वापस लिया के इट्टां तरन तारण साहिब लाईयां सन। यह गल वखरी है कदे फिर सही समझ सीमा बेनती कर रहा सा। नूर दीन की सरां तरन तारण साहिब दे लागे नूर दीन की सरां तो 1.5 किलोमीटर लंबे ए दोवें जने सिख बेचारे झाड़ां विच बैठे ने सरकड़े विच बैठे ने। ते उस वेले दिन है हालांकि दिन है सवेर का वक्त हो चला है। उस वेले दो राही उत्थों दी लंघे ते उन्हें वेख्या भी इत्थे थोड़ी सरकड़ा हिल रहा है ते झाड़ झूंड हिल रहे। वह दोवें जने डर गए डरे हुए बचन कहने कहने वेखी यार कितने इतने सिख ना होवन। दूजा कहने लगे भी सिख कितने सिख का तो नामो निशान नहीं तू इस गलों ने डर कोई जानवर होवेगा वैसे इतने बैठा तू फिक्र ना कर तू इस गलों ने डर। हालांकि वह जानवर तो नहीं सन डरते जने सिखा तो डरते सन। उन्हें बचन आके कहने लगे सिख नहीं हो सकता। उस वेले दूजा पूछा सिख क्यों नहीं हो सकता। कहने लगे सिखा का खुरा खोज मिटा दिता कदे किसी के घरों मिल सकती है तो सिख की तस्वीर मिल सकती है दो मत कुछ नहीं। बोता सिंह गरजा सिंह ने उस वेले बाहर निकले तो उन्होंने हाथ जोड़ के बचन किया भी तुम असं कुछ नहीं कहने पर सानू दसो भी लोगों च की गल फैल गई। उन्होंने पूछया तो उन्होंने दसिया भी इस वेले लोगों च गल फैल गई भी कोई सिख दुनिया में नहीं है सिख खत्म कर दिते ने जकरिया खां ने। दोनों गुरु के सूरमिया ने उत्थों सोटे तोड़े सोटे तोड़ के सड़क के विचकार खलो गए। सड़क के विचकार खलो के उन्होंने नाका ला लिया ते एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है बोता सिंह गरजा सिंह ने जकरिया खां नू आम छोटे मोटे बंदे ने चिट्ठी नहीं लिखी जकरिया खां नू एक चिट्ठी लिखी है। समय ने पंध मुका लिया ए मेनू आदत नहीं है भी मैं अगे जावां इथों ही लड़ी आप कल शुरू करांगे। भुला चुका लिखे मां प्यार नाल आखो वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। गुरु गरीब निवास कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद

चेता रखी तू अपनी मां नू ओना ही चंगा लगेगा, लेकिन पुत किते गलती ना कर आमी, तेनु जालम ने बड़े तसीहे देने ने, तेनु जालम ने बहुत कुछ तसीहे दे रहे के मनाउना है, पर पुत वे किते सिक्खी नू दाग ना लाके आ जाई, जे तू सिक्खी नू दाग लाके आ गया तेरी मां जिंदगी पर कले सिर ऊंचा करके नहीं तुर सकेगी। मां दे कोल खलोके उतने आशीर्वाद लई, कहन लग्या मां मैं कोशिश करांगा मेरा ध्यान करे घर विच ना आवे, मैं गुरु चरणा विच ध्यान जोड़ के रख सका। तुरिया अगे राह विच भैन खलोती है, भैन ने गलवकड़ी पा ली, रो पई नहीं रोक सकी, कहन लगी वीरिया मैं भी तेनु इको एक बेनती करनी है। भैणा जदों छोटियां जी होंदियां ने ना उदों तो अपने मन विच भरम पाल लैंदियां ने भई एक दिन वक्त आवेगा मेरा प्यो मैनू अपने हत्थी डोले च बिठावेगा, लेकिन मेरा प्यो तुर गया सी वीरिया, तू मेरे नालों वड्डा सी, मैं तेरे ते आसा बन रही हां, मेरा वीरा मेरा बहुत चंगा है, मेरा वीरा मेरे बापू वर्गा ही फर्ज निभाउंदा रहा है, तू मैनू बड़ा प्यार दिता वीरिया, ते मेरे मन दी तमन्ना सी जदों मैं इस वेड़े विचों कर्म चुके अपने कंत सुहेलड़े दे घर जावांगी, ते मेरे वीरिया मैं आस रखी सी तू मैनू बड़े अदब नाल तोरेगा, लेकिन अज भाणा इहो जिहा वरत गया। वीरिया मैं तेनु इको बेनती करनी चाहनी है, मैं किड्डी सुभागी भैन होवांगी जेड़ी अपने वीरे दे लहू दी मेहंदी लाके, शहीदां दे खून दी मेहंदी लाके मैं अपने सोहरे घर जावांगी। वीरिया एक गल चेता रखी, मैं तेरी पग नू कदे दाग नहीं लगन देंगी, पर तू सिक्खी तो मनुकर ना होवी। घर विच तीन ही जने रहिंदे सन, चौथा कोई रहिंदा नहीं सी, दोवें जने अपनी भैन नूं ते अपनी मां नूं मिलके औखे वेले कौन किसे दे नाल सहाई हुंदा है, ते आखिरकार दोनां कोलों प्यार लेके भाई तारू सिंह चले गए, जालम पकड़ के ले गया। याद रखो जे मैं फिर बेनती करां, ए भी नखास चौंक, दस ने पिछे तुहाडे नाल सांझ पाई सी, नखास चौंक दे बेअंत शहीद ने, ए भी नखास चौंक उस लाहौर दे विच लेके चले गए। भाई तारू सिंह नूं लेके चला गया जकरिया खां ने, उदों भाई तारू सिंह नूं बिठा के कुछ एक गल्लां सांझियां कीतियां ने, मैं पिछे भी तुहाडे नाल जिक्र कीता, थोड़ा जिहा फिर दोहरा दिया। जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं शीर कीता गया सी, उदों फ्रैक्शियर सामने बैठ के एक गल कहना भी तैनू दस किहो जी मौत चाहीदी है। बाबे बंदे बहादुर ने एक गल कही सी, कहन लगे सजना जिहो जी तेनू चाहीदी है। उन्हें आख्या मेरी मौत ते तेरी मौत दा की संबंध है, कहन लगे ते रब जाने पर मैं तेनू अपने गुरु ते भरोसा करके एक वचन आखना है, जिवें दी तू मौत मैनू देगा ना, मैनू पूर्ण भरोसा रब तेनू ओह जी मौत देगा। और उन्हें बाबा बंदा सिंह बहादुर दियां सब तो पहला अखां कढ़ियां सन। याद रखण योग बात है, उस फ्रैक्शियर दियां ओदे अपने कबीले शरीके दे बंदियां ने, सैयद भरावां ने पौने तीन सालां बाद ओदियां अखां कढ़ियां सन। अखां कढ़न तो बाद ओह करीब रुल के कई महीनियां तो बाद विच उमरिया सी। इसे तरह की कहानी भाई तारू सिंह नाल सांझी होई। जकरिया खां दे कोल बैठ गया, जकरिया खां कहण लग्या भी तारू सिंह मैं बड़े सिख शहीद किते ने, उन्हें अपनी भाषा विच मारे कहे हो बनगे, मैं बड़े सिख मारे ने, मारदियां मारदियां सिखां नूं मेरे कोल तरीके खत्म हो गए, सिखां नूं मारदियां मारदियां मेरे कोल तरीके खत्म हो गए, हुण मैनू खुद नूं नहीं सुझदा मैं तेनू किहो जी सजा देवां, मैनू खुद नूं नहीं पता लगदा तेनू किहो जी सजा देवां, इउं कर तू आपे ही चुण तेनू किहो जी मौत चाहीदी है, जिहो जी तेनू मौत चाहीदी है मैं तेनू उसे तरह की मौत दियांगा। भाई तारू सिंह ने फिर वचन आखिया, हस के कहन लग्या सजना तू खुद ही कहा, तू खुद ही कहा भी मैं बहुत सिख मारे ने, ते हुण भी तेरे नाल मैं वादा करना, मैं अपने गुरु ते भरोसा करना, ते हुण तेनू खालसा जुत्ती दी नोक अगे लाके लेके जाएगा, तू चुन भी किहो जी तेनू मौत चाहीदी है।

लड़े ते आक्रोलन भाजना पाइया गुरु के सिख फिर दोबारे इथो निकले ते आनंदपुर साहब वाले पासे चले गए। ये गल वखरी है। हुण आपां दूजा पासा लईए। उदों जदों इह सारा कुछ वरतिया 1748 विच अहमद शाह अब्दाली मार खा के गया। 1749 विच उहदे कोल फिर ना रह होया। कुछ ही महीनिया तो बाद वह फिर दोबारे आ गया। फिर दोबारे आया ते उन्हें आके इस वेले कोशिश की जंग लड़न की। मीर मन्नू लाहौर का सूबेदार है। इन्हें दिल्ली तो मदद लेनी चाहिए। उस वेले दिल्ली विच हाकम है सफदर जंग क्षमा करियो ते उस वेले दिल्ली का हाकम वह है ते उहदे कोलों उन्हें लेनी चाहिए मदद। पर वह दिलों एक दूजे नाल कौड़े सन ते उन्हें वक्त ना मदद ना भेजी ते आखिर यह सोधरे दे मैदान विच मीर मन्नू हार गया ते अहमद शाह अब्दाली जित गया। उन्हें हथियार सुट दिते ते 14 लाख रुपये का लेन देन करन दे कारण उन्हें मीर मन्नू नूं बख्श दिता। फिर दोबारे लाहौर का सूबेदार बनाता। वक्त फिर गुजरिया। हुण मीर मन्नू उदों फिर बहुत कहर करन लग पिया। उदों दे इह भाणे ने ये जो दोए टकरा रहे हैं। मैं बेनती करा इन दोनों का जुल्म कोई छोटा नहीं है। दोनों के लिए पंजाब की धरती दो कहावत कहती है। दोवें कहावत आप बहुत बारी सुनिया ने। लोग मनन लग पे सन खादा पीता लाहे दा बाकी अहमद शाहे दा। हरेक साल आके लुटन लग पिया। यह 1748 तो शुरू होया। 1770 तक इन्हें 11 हमले करने ने। अजे दो दा जिक्र दस ने तुहाडे नाल सांझा कीता। हुणे तीजे दा जिक्र करना। इहने भी इक कहावत हिंदुस्तान दी धरती ते लोकां दी जुबान ते लै आंदी। खादा पीता लाहे दा बाकी अहमद शाहे दा। ए ओयो अहमद शाह अब्दाली है। दूजी गल, सिक्खी दा कान करन वाला ए मीर मन्नू है। मीर मन्नू ने किन्ना कु कान कीता होवेगा। उदो सिख एक कहावत कहा करते सन, सिख एक वचन कहा करते सन, मनु साडी दातरी असी मनु दे सोए। उन्हां वेलियां च सोयां दी खेती जड़ी है वह वटां ते बीज दिया करते सन। घर दी लोड़ लई आम निश्चित सोए हुंदे। उदो सोयां नूं बीज देना। पर इन्हां दे विच इक खूबी है भई ज्यों ज्यों इहनूं वढ़ीए उह इक बूटे दे दो बूटे होके बणदे ने, दो दे चार होके निबड़दे ने, चार दे छे होके निबड़दे ने। ज्यों ज्यों उहनां नूं वढ़ी जांदे सी ते उत्थे उहनां दी जड़ चौड़ी होके उहदे विचों कई बूटे पैदा हुंदे सन। इह कहावत बण गई, मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू वढ़दा असी दून सवाए होए। उदो इस पापी ने एक जुल्म कीता। जिथे किते भी सिख मिले इन्हें एक फौज बनाई। जेड़ी फौज नू हुक्म हुंदा सी भी तुसी 60 तो 65 किलोमीटर तक दा सफर करना है। जिथे भी किते झाड़ा झूंडा विच कोई भी सिख तुहानू मिल जाए, शिकार किया जांदा सी। पशुआं दे वांगू पंछियां दे वांगू सिखां दा शिकार किया जांदा सी। उन्हां दिनां विच अज वर्गा कहर कदे नहीं सी होया। मैं बेनती करा हुण तक जिन्हें भी जालम आए सन वह मनुखां दे उत्ते सिखां दे उत्ते कहर करदे रहे। हुण ए पापी ने नवी पिरत पाउण लग्या। इन्हें घरां तो कुछ सिख बीबियां भी गिरफ्तार कर लईआं। जिहड़े छोटे बच्चे हुंदे सन, सिख बच्चियां हुंदियां सन, सिख बीबियां हुंदियां सन, उदों उह घरां विच रहिंदियां सन। इस पापी ने उन्हां छोटे बच्चियां नूं अते उन्हां गुरु कीआं सिखणियां नूं भी अपने वल्लों कैदी बना लिया ते इह भी लाहौर लै गया। लाहौर ले जाके इन्हें उन्हें अगे दो सवाल रखे। मैं अपनी बच्चियां नूं बेनती करना चाहना इन गल नूं ध्यान दियो। उन्हें दो सवाल रखे अगे। पहला सवाल यह रखिया भई तुसी यह गल दसो असी सिखां नूं इन्ना मारदे हैं, सिख लभना औखा हो गया, पर फिर भी सिख मुकदे क्यों नहीं, किवें आउंदे ने? उन्हां विचों बहुता कसूर तुहाडियां मावां दा है। पता नहीं तुसी अपनी गोद विचों उन्हां बच्चियां नूं किन्ना कुछ सिखा के भेजदियां हो।
ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਤ

और देखो सिखां दी खासियत मैं बार बार बेनती करा, उन्होंने उन्हें आख्या भी देख तू हाकम है असी तेन कैदी रखने भावे पर तेन शाही कैदी वांगू रखांगे क्योंकि तू राजनीतिक कैदी है तू अपराधी कैदी नहीं है तेन को सजा नहीं असी देनी शाही कैदियां वांगू रखिया उन्हू बतन हूं सी जे तेन कोई चीज चाहिए हो तू कोई गल करनी हो तू बुला सकना उन्हें सुनेहा देकर चरण सिंह बुलाया चरत सिंह कहन लगे भी मैं तेना दो गल कर कह लगे करो कह लगे पहली गल तो है भी जे तू मैं छड़ दवे ना मैं अहमद शाह अब्दाली जी बड़ा नेड़े है तो जे तू मैं छड़ दिता मैं पूर्ण आस है भी आने वाले समय दे मैं इथों का राजा बनना है ते मैं तेरे नाल वादा करना तू जिथों का कहेंगा मैं तेन उत्थे दा फौज सूबेदार ला देंगा जरनैल बना देंगा जिहड़ी पदवी तू चाहे मैं तेन दे देंगा तू इवें कर तू मैनू छड्ड दे आने वाले समय का मैं राजा उस वेले भी चरत सिंह ने बड़ा अलखी जवाब दिता सी कहन लगे सजना असी तेरे वांगू थालियां च पाके सूबेदारियां नहीं लेंदे असी तेरे वांगू थालियां च पाईयां सूबेदारियां नहीं लेंदे सानू साडे गुरु ने नवाजिया होया है ते असी ता फटे हुए चोले पाके भी खान नू कुछ ना होवे घोड़े भी ना साडे कोल हुण चंगी किस्म दे पर साडा गुरु नाल प्यार होवे ना असी ता चढ़दी कला च रहिंदे असी तेरे वर्गे सूबेदारियां नहीं प्रवान करदे देखो सिख कैसे होणगे उदों दिंदे सन ते असी उह सूबेदारियां देण नू तैयार नहीं सी दूजी गल उहने कहा भी चंगा जे तू इस पक्खों नहीं ना मैनू छड़ना तू सूबेदारियां दा लालच नहीं करदा तेन अहदेदारियां का लालच नहीं है तो फिर तू यू कर खालसा तो तेन बहुत प्यार है ना उन्हें आख्या हां खालसे नाल तो मैनू बहुत प्यार है कह लगे फिर तू यू कर तू मैनू छड़ दे तू मैनू माफ कर दे लोगों ने कहना भी देख खड़क सिंह किड्डा चंगा सिख है किड्डी खालसे की शान वधी है पर जिहड़ा बंदा उन्हें कैदी बनाया सी उह बिना किसी शर्त तो रिहा कर दिता फिर उस वेले चरत सिंह ने जवाब दिता कहने लगे सजना यह भी गलती भी सानू भाई नहीं उन्हें पूछा क्यों कह लगे इसलिए नहीं भाई पर सिख कदे अपनी वडियाई नहीं चाहता उसे चाहता वडियाई हो जो मेरे गुरु की हो तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाउ ना जाने मेरा टाइम मेरे को बहुत थोड़ा मैं अगली गल करनी चाहना 1764 में अहमद शाह अब्दाली ए सारियां गल्लां सुन के तरथली दियां सिखां दे नाल सिद्धा टक्कर लैण वास्ते आ गया ते उन्हें आके ऐलान कर दिता भी मैं सिखां दे नाल सिद्धी टक्कर लेनी है रब दा सबब बनिया उन्हां दिनां विच खालसा अपनियां सरगर्मियां च लगे होया सी कोई किधरे कोई किधरे बड़ी दूर तक इन्हां दा खलारा खिलर गया सी उन्हें आके सब तो पहला हरिमंदर साहिब दे कोल आ गया हरिमंदर साहब के कोल आया याद रखो जी मैं बेनती करा उदो केवल ते केवल 30 सिख सन हरिमंदर साहब की सेवा संभाल ली केवल 30 उन्हां विचों मुखिया गुरबख्श सिंह शहीद गुरबख्श सिंह ते 30 सिखां दे विचों ओ जिहड़ा अब्दाली फौज लेके आया 30,000 की फौज लेके अमृतसर साहब ते चढ़ाई करदा ते सिखां दे नाल 30 सिखां दे नाल गल करदा पहला उस सुनेहा भेजदा भी देखो तुसी 30 हो यह मैनू पूर्ण भरोसा भी तुसी जित नहीं सकते क्योंकि 30,000 के मुकाबले च की ने ते तुसी यूं करो हथ खड़े करके आ जाओ जिवें मेरा चाचा तुसी कैदी बनाया सी ना मैं उस दिन को थोड़े दिन तुहानू कैदी बनाना चाहना है गुरु के सिखां ने आख्या सजना यह तो साडी जिंदगी च ही नहीं है ना हथ खड़े करके आना वैसे पिछले समय च इतिहास दागी भी कर लिया होया कुछ लोगों ने इस गल च कोई शक भी नहीं है हथ खड़े करके भी आ गए सन पर उदो उन्होंने बच्चे ने आख्या भी साडी जिंदगी च ही नहीं है असी हथ खड़े करके आ जाइए असी शहादत देवांगे की होया जे 30 है खैर मैं गल नेड़े रखा उहदी 30,000 फौज ने हल्ला किया 30 गुरु के सिखां ने अपनियां शहादतां दित्तियां गुरबख्श सिंह ने कोई बेनती की कहन लगे सजना तू रज के गोलियां चला पर यह गल चेता रखी मेरी किसी पिट विच गोली ना मारी जिन्नियां गोलियां मारियां छाती च मारी क्योंकि असी 30 दे 30 तीहां विचों किसी ने नहीं बचना ते कल कोई ए ना देख के कभी भी सिख भज गए होणगे ते उहदी

पुरुषता गुर सत गुर संग कीरे हमी थप धन धन गुरु नानक जन कीरा जित मिले।

0: जहां खले कलगी तर तेर और प्रमोद तर पहुंचे तेर।
1: जदों जंग जित लिया फते पा लई जिथे कलगी धर महाराज धीरज धारी सतगुरु धीरज धार के खड़े ने उथे जा पहुंचे सारे।
0: सैदा बेगुतर है तरे गुर के चरण बंद ना करे।
1: सैदा बेग घोड़े तो थले उतरिया आके उन्हें सतगुरु महाराज जी नूं मत्था टेकिया।
0: बोले प्रभु उम्र बरकरार मिले सुख बहीन तकरार।
1: महाराज ने इस तरह का वचन किया कि लम्मी उम्र होवे तेरी और तू बड़े सोहने समय ते बड़ा चंगा मौका सी जदों तू आके सामू मिलिया है।
0: सैदा बेग समझ तू बेग आहो कंधारी बांधो तेग।
1: महाराज कहन लगे सैदा बेग तू बेग तो भाव छेती इस गल नूं समझ लै हुण याद कर लै बीतिया समा अपना उन्हां जन्मां दे विच तू कंधारी सैं ते तेग बांधा हुंदा सी सोहनी तेग चंगा लोहा लिया के कुटना मुठे बनाउणे सोहणे शस्त्र बांधा हुंदा।
0: पूरब गुरु नानक तुम मिले सेवा करी हुती तब भले।
1: जदों असीं पहलां गुरु नानक देव जी दे जामे दे विच सां उदों तू साडी बड़े भले ढंग नाल सेवा कीती सी।
0: तब हम तो सोइम कह गए कबे बुलावेंगे हित किए।
1: उदों तेरे नाल असीं इस तरह दा वचन कीता सी याद कर नाल अपने वल्लों भी कृपा दृष्टि कीती आ कि इहनूं याद आ जावे। तैनू यह कहा कि असी कदे तैनू बुलावांगे अपने पास कदे तैनू मिलांगे ये याद कर तैनू बचन कहा सी।
0: शस्त्र बिलोकन करे त्यारो तब परखेंगे जथा उचारो।
1: फिर तू जिमें कहना ना कि मेरी तलवार देखो ये बड़ी तिखी है इहदी धार बड़ी तिखी है फिर तदों असी तेरे शस्त्र देखांगे उदों परखांगे तेरी तलवार नूं।
0: परचा प्रथम शब्द को किया पाछे इस प्रकार कह दिया।
1: पहला तैनू शब्द का परचा पाया सी पहलों असी नाम जपाया बाणी पढ़ाई भाव नाम दे विच लाया सी तैनू ते बाद दे विच फिर इस तरह का वचन किया सी कि असी फिर कदे जदों सोहना समा आवेगा तेरे शस्त्र देखांगे।
0: तुपक कमाइल करा मात चिन खैर खिलस जन्नात।
1: सो इस तरह का जिहड़ा वचन सी तेरे ताई कीता सी कि जिहड़ी है तू ये कहा सी सानू कि जिहड़ी बंदूक चलाउणी है इहदी गोली जिहड़ी चलाउणी है कमाल दे नाल ये एक करामात है। तू कहा सी कि तुहाडे अंदर बड़ी करामात है तो इस तरह के इस नाल असी तैनू भी कहा कि जिहड़ी है ना जे बंदूक चलाउणी है बंदूक की तमाई का कमाल ऐसा होवे कि लोग इसनू करामात समझण। बंदूक का कमाल करामात है इस कमाल वाले नू केड़ी चीज नहीं मिलती भाव सारिया चीजा मिलेगी दोस्तों वाली दोस्ती बेशत मिलनगिया बेशत दोवां लोगों के सुख मिलणगे दोस्तां ने तो खुश होना ही होना ते नाल फिर कमाल करके सूरबीरता होवेगी सूरबीरता दे नाल फिर परलोक दे विच भी जगह मिलती है।
0: एती बात गुरु जब कहे समझ

0: बस है पठान, बस है बास पठान को दीनों बिपर बताई।
1: तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी विच सजी होई गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा विच श्रवण कर रहे हां प्रसंग श्री चमकौर साहब अचानक तुरकां ने हमला किया सहिदा बेग शरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी कि मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला। इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का जाबर खां पठान है। महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी नू 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया। शाम 2 घड़िया दिन बाकी सी जदों चले ने सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे। रात नूं जाके घेरा पा लिया। गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं लियाउणा होर किसी नूं तंग नहीं करना। महाराज दा वचन मन के पठान नूं बन्न लिआंदा रस्सियां नाल अते उस ब्राह्मण दी स्त्री नूं भी नाल लै के आए है। आ के महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच। आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं। प्यार सत्कार नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु
0: साहिब जी क्यों पई तुरक सुबत जय सहज सुभाए जाए अचानक घेरो पाए।
1: सहज सुभाव की बिना किसे डर तो बिना किसे खौफ तो ये साडा राज है। मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकता है मैं जो मर्जी करा। इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया।
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो गयो पठान सबंध चलायो।
1: क्योंकि हो सकदा रवि जी कहंदे ने किसी ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया। हो सकदा वो इलाके दे विच बदनाम होवे जबर खां पहलां भी लोकां दीआं धीआं भैणां नूं चुक लिआउंदा होवे ताइयों किसी ने उहदी मदद भी नहीं कीती है कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है। सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उसनूं पकड़ लिया।
0: जिजनी को इक तुरंग चढ़ायो ए कुरीत फल सबन सुनायो।
1: ब्राह्मणी नूं बाहर लिआंदा पठान नूं भी खड़ा कर लिया पिंड वालिआं नूं इकट्ठा करके। सिंघां ने उहदा कसूर सुनाया बई असीं इहनूं ऐवें नहीं लै के जा रहे इहने आह कुकर्म कीता है इस करके असीं इहनूं पकड़ के लै के जा रहे हां।
0: कै दोनों को अपर ना छेरा शीघ्र करत गमने तिस बेरा।
1: दोनों नूं पकड़ लिया उस वक्त शीघ्र ही उत्थों वापस

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुर के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हूं चंगिया निहारियां खवाइया चंगा घ्यो आदक जा देना

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ कर नानिद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गए है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे

0: महाराज वापस उतरिया एकदम धरती ते खड़े हो गए पर सज्जी बांह नूं एक झटका वज्जिया थोड़ा जिहा एकदम घोड़े ने छाल जो मारी सतगुरु फुरतीले आप भी बहुत ने एकदम दे नाल अणजाण बंदा हुंदा तां घोड़ा उहनूं सुट दिंदा पर सतगुरु सच्चे पातशाह तां आप मालक ने सृष्टि दे अंतरजामी सतगुरु जाणदे ने की होण वाला है इस करके सावधान रहे
1: जडे बोर पीड़ा कुछ पए सी तुरमाल संग बंद गए
0: जदों दोबारा फिर घोड़े ते चढ़े बांह विच कुछ पीड़ होई झटका वज्या बांह नूं फिर सेवक ने चिट्टे रंग

0: युद्ध विच टेके लड़ो जाओ फिर हुण जंग विच जित प्राप्त होवेगी।
1: हतो रिपन दलको दलो पकड़ो शस्त्र क्रुद्ध,
0: जाओ जाके मैदाने जंग दे दुश्मन नु मारो ते अपने हत्थां दे विच शस्त्र पकड़ लो, वीर रस विच आ जाओ ते जंग करो। यां गुरां ने हुण वचन करता, हुण रक्षा भी करनगे। जे इन्ना क ना खिचण फिर आपां सिद्धे भी नहीं हुंदे। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई गुरां ने जो वचन कहा है वह वचन जरूर कमाया करो, माड़ी मोटी ढिल दिखाउणी चंगी नहीं। इस तरह फिर आपां नूं घाटा पैंदा। जिन्हां जिन्हां ने भी गुरु के वचनां दे उत्ते पहरा दिता है, एक एक वचन नूं कमाया है, उन्हां नूं सतगुरु महाराज निहाल कर दिता है। हां जे कोई अवग्या हो जांदी तां माफी मंग लो, यही दस्सिया है। माफियां मंग लिया करो, सवेरे दुपहरे शाम रात महाराज तो माफी मंगते रहो। महाराज मेहर करो, सातों को गलती हो जाती है, सौ गल्लां हो जांदियां ने, सातों पूरी रहत नहीं कमाई जाती। हां थोड़े सिख ही आ पर नहीं, कई बार साडे कोल ढिलाइयां हो जांदियां ने। इउं सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तो माफियां मंग लईए कि महाराज असीं इन्ने योग नहीं, हां सानू बख्श लो। इस तरह महाराज अगे हाथ जोड़ के बेनती करिए,

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है युद्ध विच टिक के लड़ो हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वर गए बचन सन वरसम यह वर हो गया खालसे नूं भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है इहदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण बचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं बहुत वीर रस अखां विच लालियां शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अरदमणी
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है भाव इहदा नाम ज्वाला बमणी दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिरहवै तनुख संभारे
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली अपनी गलती का एहसास किया है उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गर्जन दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह
0: इको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे नूं दुबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भुखा शेर पैंदा है टुट के इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी धा के दौड़ के
1: कितक हते को मार हटाए
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग परहारे
0: ये सारियां इको ही किस्म बरछे दियां ने तोमर ते सेला ते सांग सोटी का फर्क है उहदी डांग दी लंबाई का फर्क है इस प्रकार उन्हां दे अगे फल का फर्क है देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिफर अगर कर किस कग मारे
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने उह सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतर आईयां।
1: परे हेल कर भेरे पबारे
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे
0: बहुत दीर्घ मार मची बड़ी तगड़ी मार मचाई शहीदां सिंघां ने आके।
1: مر مر پرتے پائے پسارے
0: مر مر کے لمے پی گئے پائے اپنے پیر پسار کے اسی وقت ہی انہوں کا تو بار نہیں چل سکتے وہ جی ایک برچا مارن سو سو بندہ کٹھا ہی ڈگتا ہے
1: جنم لنگ بھگے کو کھائے
0: مانو کہ جی میں

0: आप जी ने यह कलयुग के समय के वीर योधा खालसा प्रगट किया है जो सारे नालों उत्तम है श्रोमणी है
1: दोहिरा सर्ब श्रोमण खालसा रचियो पंथ सुखदाए।
0: ये सारे नालों श्रोमणी खालसा पंथ जो हर प्रकार के नाल समर्थ है जो सुख दे देण वाला सुख नूं भोगण वाला दूसरियां नूं सुख देण वाला पर उपकारी पंथ रचिया है।
1: बिनेक गंदे धूम ते जग में अदक सुहाए।
0: एक कौम है एक खालसा पंथ है जेड़ा एक जो गंदा धूआं है तंबाकू उहदे तों रहत हो के जगत दे विच शोभनीक हुंदा। बाकी लोग कोई भी है भावें गंदा धूआं सारी दुनिया पींदी है।
1: पूछे परम सुप्रेम कर रहनी को बिरतंत।
0: हुण रहनी पुछदे ने सारे जाने कि परम प्रेम दे नाल पुछदे ने कि जिहड़ी खालसे दी रहनी बहनी है ये कैसी होनी चाहिदी है।
1: किसको देवे किमर है कैसे वरतै संत।
0: ए संत स्वरूप खालसा संत सिपाही खालसा ये विच हुण साडा है कि ग्रिस्तियां दा अगे तां किसे नूं होर दान दिंदे सी पर आप जी ने कहा दान दियो इन्हीं को भलो और नाले हुण होरनां नूं दान बंद कर दिता आपने। हुण ये भी दसो कि दान किनूं दईए किवें रहीए वरतारे विच रहत मर्यादा अपनी रहनी बहनी विच किवें रहीए ते इहदे नाल नाल कैसे वरतों संत किस तरीके नाल वरतना करिए संत खालसा नाल।
1: गुरु कै सुन खालसा केस पाहुली मुकत।
0: महाराज जी ने वचन किया सुनो खालसा जी जेड़ा केस रखे हुए ने खंडे बाटे दा अमर छक के ककारां दी मर्यादा नितनेमी प्रेमी है ये तां पक्का ही मुक्त है जेड़ा कुरहितां तो बचिया होवे।
1: खंडे की सब ते भले कै चरणन की।
0: खंडे दी हुण असी पहल बख्शिश कीती है जां पहलां चरण पहल बख्शिश कीती सी खालसे नूं सो इस करके सारयां नालों श्रोमणी खंडे बाटे दा अमृत है।
1: युग युग में हम अवतर है अपने भगतन काज।
0: जुगां जुगां दे विच असीं अवतार भेजदे आं जां आप आउंदे आं अवतारां नूं भी भेजदे ने हुक्म करके क्योंकि बाहर नहीं है कोई महाराज जी तों। इस करके महाराज कहिंदे जदों जदों दुनिया दे उत्ते भीड़ा बणदी है जिन्नी कि समर्था दी लोड़ है नित अवतार नमित अवतार फिर अंसा अवतार अवेशा अवतार एक कला अवतार पूर्ण अवतार छे तरह के अवतार भेजते हैं। जदों देखिया कि हुण किसे तो कम नहीं बनता फिर असी खुद आप चल के सृष्टि उत्ते आउंदे हां।
1: रहनी रह सो खालसा सो मेरो सिर ताज।
0: जेड़ा रहनी दे विच रहिंदा वो मेरा खालसा है ये नहीं कि सारे अपने आप नूं खालसा लिखी जान जां समझी जान खालसा। रहत मर्यादा वाला ही खालसा है वो मेरा सिरताज है वो मेरे सिरताज गुरसिख जिन्हां दे महाराज कहिंदे मैं दर्शन करके खुश हुंदा हां जो मर्यादा दे विच परपक हन।
1: धरै केस पाहुल बिना धरै केस पाहुल बिना भीखी मूरख सिख।
0: आवे कि अमृत जरूर छको क्योंकि अमृत छकिया रहत का धारनी हुंदा है एवें रहत कोई नहीं रखता क्योंकि रहत बिना जीवन पलटा नहीं खांदा। इसलिए केस अमृत ते रहत जिहड़ी है ये आपस विच बहुत जरूरी है। जे हुण कोई बंदा धरे केस अमृत छके तो बिना उहनूं की कहिंदे भेखी है उह मूर्ख सिख कहिंदे केस दिखा के ये दाढ़ी रख के ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਕਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਲੈਂਦਾ।
1: ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਤਿਆਗੈ ਸਿੱਖ।
0: ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਪੀ ਤਿਆਗੈ ਇਹ ਸੌ ਸਾਖੀ ਚ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਭਿੱਖ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਚ ਉਕਾਈ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਭੇਖੀ ਮੂਰਖ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਵੱਜ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੌ ਸਾਖੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਪਾਪੀ ਤਿਆਗੈ ਭਿੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੇਖ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
1: ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਰਹਿਣਾ ਭਲਾ ਦੋ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ।
0: ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟੇਕ ਕੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ।
1: ਮੇਰੋ ਸਿੱਖ ਕਹਾਏ ਕੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸੋਏ।
0: ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਭਰਮੇਗਾ ਭਟਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਧੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੇਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਚ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ

0: एक तो जिहड़े लोभी बंदा उहदे नाल प्रीति ना करो, मित्र ना बनाओ उहनू अपना, यह तो सारी दुनिया नू भी पता है। लोभी बंदे ते नहीं ठहरना, ना उहदे नाल गलबात करनी है। एक जिहड़े पहाड़िए ने, इह पहाड़ियां नू अपने मित्र ना बनाओ।
1: यार बरसो बरसै ऐसी सुनो सिख मम बचे जैसे।
0: चारे बरना दे नाल बरतना भी है। बरतना किवें है? कहिंदे इस तरह मेरा सिख चारे बरना

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहने जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै लई, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्याग, पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेडे मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेडे हुण आपां नूं मानदे ही नहीं, गुरु घर नूं नहीं मानदे एवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जिहड़ा गुरु घर दा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करते, कई ब्राह्मण गुरु घर के प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़ने वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए, सतगुरु कहते चलो उन्हों का दान एक वखरा है, वह तो एक गुरसिख है। भाव कहण का सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जाए, खंडे बाटे का अमृत छक लवे, गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहिए। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ

0: स्वप्ते निसमय सतगुर मन भावत कर खान अमृत वेला मैं उठी कीनो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साहब सिंह जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतान उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी क्योंकि जदों मन के अंदरों दुविधा मिट जाती है सारे व्यापक एक ही रूप दिखता है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना कि नदी के पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हाथ आ जाते तो भी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हाथ आना तो है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी। आमदन वाला हाथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वो शुद्ध रूप विच सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कविया गुणिया ज्ञानिया पंडितों नाल कर रहे हैं। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी ये कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आने

0: सुपती नित मैं सतगुर मन भावत कर खान।
1: मन पाउंदा भोजन छक के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह

0: फिर अगे जाके पापा का फल पाउंदे ने, वो बंदे नूं किते भी आनंद नहीं मिलता।
1: जात पर की काल ताज मिला खालस संग,
0: कहने जात हुंदी जिहड़ी जात पात वर्ण आश्रम इन्हां दी कान छड के खालसा आपस विच मिलके रहे।
1: गुरबाणी सो प्रेम कर मन रब गूढ़ा रंग,
0: कहने गुरबाणी दे नाल प्रेम करो, मन नूं गूढ़े रंग विच रंग लो, नाम दे रंग विच रंग लेना, गुरबाणी पढ़नी, गुरबाणी दा प्रेम करना।
1: अमरो है उपदेश अस जो धारा सुख पाए,
0: महाराज कहिंदे इह साडा उपदेश है, जिहड़ा बंदा भी धारण करेगा साढ़े उपदेश नूं ओह सुख पावेगा।
1: वधै खालसा जगत में सब अवनी पर छाए,
0: कहिंदे समा पा के खालसा वधेगा, सारी धरती दे उत्ते खालसा छा जावेगा।
1: वधै पंथ पर धर्म ने या बिद कल का धर्म,
0: कहिंदे कलयुग दा एक धर्म थोनू दसदे आ, वधै पंथ, अपना पंथ तां बहुत वधेगा पर जिहड़े होर धर्म भी बहुत चलणगे, जिहड़े होर धर्म चलणगे ना दुनिया दे विच ओह नहीं वधणगे, ओह थोड़ा जिहा चिर चल के डिग पिया करनगे।
1: वरतै सकल जहान में बिरला जाने मरम,
0: सारे जहान दे विच लोकी आपो अपना धर्म चलाउणगे, कोई किते कोई किते, नवें तों नवें गुरु बणनगे, नवें तों नवें पखंडी लोक पैदा होणगे, लोक उहनां विच उड़ जाणगे भी, पर कोई अपने धर्म दे मर्म नूं भेद नूं जाण नहीं सकदा। लोकी धर्म नूं असल धर्म लोक समझदे ही नहीं कि धर्म है की चीज, धर्म नूं लोक मखौल करदे ने।
1: बिरला जाने मर्म,
0: बिरला बंदा मर्म तों भाव हुंदा भेद नूं जाणेगा।
1: करता हुक्म होए हो मैं तब कल जोरे हाथ,
0: सो इस तरीके नाल कहिंदे जदों करता दा हुक्म होया उस वक्त कलयुग ने हाथ जोड़े। महाराज कहिंदे कलयुग साडे कोल आया भी सी, जदों कहिंदे असीं संसार दे अंदर अवतार धारिया, कलयुग ने भी आउणा सी तां साडे कोल आ के बेनती भी कीती उहने।
1: राज तुमारो बेर हम हमें पंथ के साथ,
0: महाराज नूं कहिंदा जदों तुहाडा राज होवेगा मेरा भी राज होवेगा, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
1: ਜਗਨਨਾਥ ਕੀ ਠੋਰ ਮੋਏ ਦਵਾਰਕਾ ਮਹਿਰਨ ਛੋਰ,
0: ਪਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਗਨਨਾਥ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ।
1: ਤੈਸੇ ਤੁਮ ਮਮ ਰਾਖੀਓ ਸਕਲ ਕਰੋਗਾ ਕਾਜ,
0: ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ,

0: खुशामद बचन उधर परन के काज।
1: कलयुग सुना रहा है अपना प्रसंग, मेरे समय के अंदर की वर्तारा वरतेगा। प्यार तो लोगों का घट ही होगा आपस में, पर पेट भरन वास्ते लोग खुशामद करया करनगे।
0: नारी मिलना भोग कवि ग्रह ग्रह जजिए साजे।
1: भाव अर्थ देने के एक ता बस यही सारा दिन मन दे अंदर कोई राम नाम दी भगती दी गल नहीं आउणी, कोई उपकार दी गल नहीं, कोई सेवा दी गल नहीं, चज दी गल ता मन च आउणी नहीं। कलयुग विच बस जदों कदों मन च विषय विकार ही रहा करनगे लोकां दे, माड़ा देखना माड़ा सुनना माड़ियां गल्लां करनियां बस यही मन च चितवणगे कि कदों विषयां च परिवर्त होईए कदों रात होवे। कलयुग दे विच जिहड़े चंगे कवि होणगे उहनां नूं कहणगे तां एवें गल्लां मारदे ने, ते जिहड़े कवि गंदे गाने लिखिया करनगे गंदे गीत गाया करनगे गाउण वाले लोग उन्हां नूं कहणगे बंदा बड़ा गुड है, सब तो अच्छा आदमी है, इड्डी साडा ख्याल रखदा है, साडा मनोरंजन कीता है बंदे ने। इउं घरां घरां दे विच जा के लोकी गंदे गीत सुनाया करनगे, लोक उन्हां नूं सिहरे पाया करनगे वाह वी वाह इह बंदे ने असली गल कीती है। जिहड़ा नाम दी गल करेगा नाउं लए तिस बदनामी कल के लखण एही, नाम लैण वाले नी दुनिया बदनामी करेगी।
0: बेद बेच दे बेद तार भूम बेच दे छत्रे।
1: बेद तार जिहड़े ब्राह्मण होणगे कलयुग दे विच उह बेदां नूं बेचणगे, विद्या बेचणगे, सुना के कुछ ना कुछ लोगां दे ताईं पैसे लिया करनगे।
0: भूम बेच दे छत्रे।
1: जिहड़े छत्री लोग होणगे दुनिया दे अंदर वो अपनी धरती नूं बेचना शुरू कर देणगे।
0: घर घर बेचे बन्नीए बहुत शूद्र बेचते पुत्र।
1: बाणी अपना घर बेचिया करनगे, शूद्र जिहड़े ने अपने पुत्र नूं वेच दिया करनगे, ऐसा समा आएगा।
0: भूखे मरते काम बिन भगवा करके भेक।
1: लोकां नूं काम दी इन्नी नहीं होएगी, कम्मां तों कतराउणगे, किहड़ा मेहनत करे किहड़ा कम करके खावे। इहदे नाल तां कहिंदे संत बण जांदे आ, भगवे कपड़े पा के भेख बना के भेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन, इउं लोक वधिया पूड़े खीरां खाया करनगे।
0: जड्डा बंद करते सुरस मृग छाला पर वेक।
1: फिर इस तरह करनगे बहुत सारे लोग कि जटां लंबियां लंबियां बना लिया करनगे, ते फिर मृगशाला जिहड़ी विछा लैणी, वेख कर लैणा अपना साधुआं वाला, अते विषयां च प्रवेश होणगे, देखण नूं संत महाराज होणगे, ते अंदरों कम जिहड़े ने ओह बाले भैड़े करिया करनगे।
0: लोकन को ऐसे कै संत संग है भाग।
1: लोगां नूं कहा करनगे भई तेरे तां बड़े वड्डे भाग है, तू संतां नाल आके मिल गया, और कुकर्म इन्ने करिया करनगे भई ये कहा करनगे मैनू संत जी कहो, ते कुकर्म करनगे संसार नूं गलत रस्ते लाउणगे, इस तरह दी दुनिया हौली हौली बन जावेगी।
0: आप नरक अवरन नरक करनी बने न लाग।
1: हुण आप भी नरकां नूं जाणा ते दूजियां नूं भी नरकां विच लैके जाणा, शुभ करनी नाल लगना ही ना बनेगा भाव, छोणगे भी नहीं, ना चंगा आप कम करना ना दूजियां नूं प्रेरणा देनी, ऐसी दुनिया बन जावेगी।
0: लोकन तो वंचन करे कथे ज्ञान की बात।
1: वंचन हुंदा ठगना, लोकां नूं ठगिया करनगे ज्ञान दियां गल्लां करके, बड़े बड़े ज्ञान दियां गल्लां, ज्ञान ऐसा कि दुनिया नूं एक बार जना दिया करनगे ते मैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हां। वैसे ज्ञान जिहड़े ने ओह संसार नूं ज्ञान दियां, ताइयों एक कहावत बणी आ कहिंदे ज्ञान दियां गप्पां।

0: और जुगन में आसरा बहुत जग तप अरच।
1: ब्रह्मा जी कह लगे कलयुग होर जुगां दे विच लोकां नूं आसरा जग दा तप दा अर्चना करन दा।
0: राम नाम जप रसन स्वास कलमे कारज सरच।
1: कलयुग दे विच सारयां नालों श्रेष्ठ कारज होवेगा कि मूंह दे नाल वाहेगुरू वाहेगुरू जपना अते स्वास स्वास जपना। कलयुग विच सारयां नालों जिहड़ी वड्डी चीज है ना तेरे समें दे विच, बाकी मंत्र जंतर तंत्र कोई ना चलेगा, किसे देवते दा कुछ ना राज चलेगा, सब खत्म हो जाणगे, एक बस नाम दा ही महात्म होवेगा चारे पासे।
0: तोहे राज होए पुत्र जब सब देवन देव वरज।
1: ब्रह्मा जी कहंदे पुत्र जब तेरा राज होवेगा ना सारे देवत्यां नूं वरज देंगा, किसे देवते दा कुछ कर्म नहीं चलेगा, कोई नहीं आवेगा धरती ते, सिर्फ तेरा ही राज होवेगा।
0: जो इच्छा त्यो वर्तिए नाम महात्म गर्ज।
1: तो जिमें इच्छा होवे उवें करी गर्ज, कहंदे नाम महात्म गर्ज, लोकां नूं गर्ज गर्ज के बदल मंगू सुनाई। ओ लोको कलयुग दे विच अब कलू आयो रे, एक नाम बोहो बोहो अनरुत नाही नाही, मत भरम भूलो भूलो। ओ कलयुग दे लोको सुन लो, होर कोई कम ना करियो, कोई कम नहीं फलना, किसे देवी देवता दी पूजा ना करियो, मड़ी मसाणी ना पूजियो। कलयुग विच सिर्फ वाहेगुरु मंत्र दा राज है, वाहेगुरु कहो।
0: भला तुम्हारा राज होए सकल सिद्ध होए वाच।
1: तेरा भला राज होवेगा और सारे कहे हुए जिहड़े बचन ने ए सिद्ध हो जाणगे।
0: थोड़ी करनी फल अधिक तीन राखियो साच।
1: कलयुग दे विच थोड़ी करनी करनगे लोक, ते थोड़ी करनी दा फल ज्यादा होया करेगा। इस तरह तिन्ना युगां दे विच अपने समय च जान रखी कि नाम दी थोड़ी करनी दा फल बहुता। पहलियां युगां विच लोक लखां बरस तप कर कर मर जांदे सी पुठे लटक लटक के, उदों नहीं सी इन्ना फल मिलदा हुंदा लोकां नूं, पर कलयुग दे विच सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने आप भी यह वचन लिखे ने, एक चित जे एक छिन त्यायो काल फास के बीच ना आयो।
0: पर अंशी पर नार तज नाम सिरा है सुवात।
1: इन्हां गल्लां दा ध्यान रखियो, तीन चीजां दा, पर अंश खाणी पराई इस्त्री वल जाना, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਨ ਦੋਖ ਕਿਸ ਪਾਪ ਨਾ ਫੇੜੇ, ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ। ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਪਰ ਨਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਿਆਗ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ

0: लख रुपए महाराज ने इनू करण पर्व लिखण दा ही दिता। बड़ी जड़ी बख्शिश सी ना महिमा वो प्राप्त की है। इस तरीके दे नाल छंदाबंदी दी सोहनी चाल इन लिखी। कवरेश ने जो कवरेश केशोदास दा लड़का होया कवि, यह कवरेश ने द्रोण पुरब जिहड़ा है ना यह भाषा करके सुनाया। तो हंस राम जिहड़ा कवि दी पठानका तो पता लगता है कि हंस राम का अगे नाम आएगा। इन्होंने करण पर्व का टीका किया महाराज के कहने से, अमृत राय ने नहीं किया। सो हंस राम तां दिन करके करण पर्व आरंभ अमृत कवि ने लिखिया। जिहड़ा अमृत राय है उन्हें लिखिया सी सभा पर्व। इन्हें तो यह पटियाले लाइब्रेरी विच भाई वीर सिंह जी कहिंदे पिया है यह करण पर्व सभा पर्व जिहड़ा उन्हां कवियां ने लिखिया सी। ते हंस राम लिखदा है कि 60,000 रुपया मैनू करण पर्व का इनाम मिलिया दसवें पातशाह कोलों। जिवें उन्होंने अपनी कविता च लिखिया, प्रथम किरपा कर राख कर गुरु गोबिंद उदार, टका करे बख्शीस तव मोको 60,000। यह करण पर्व भी पटियाला लाइब्रेरी विच ही पिया है। सो इस करके महाराज कवियां नू 60,000, किसी नू 1,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया, पहला कवि जी कह आए ने करोड़ करोड़ रुपया भी सतगुरु महाराज ने कईयां नू बख्शिश कीता है।
1: पावन कवि गिनती मैं नीत रहन टेर खावै चेत।
0: 52 सोहने कवि, अच्छे टॉप दे कवि जेड़े सी दुनिया भर दे विच्चों दसवें पातशाह ने अपने कोल रखे। हर रोज उन्हां तों इहदे विच इह किंतु आम लोगों में भावें आ जाए, पर आप संगत जो हाँ यह गल है कि सतगुरु भावें किसी के सिर पर हाथ रख के लिखवा लैन किसी भी चीज नूं, जां सतगुरु सीधा लिख देन। इहदे उत्ते नहीं किंतु करीदा हुंदा कि महाराज ने उह तां कवि तों लिखवाया, जां लोग जिवें किंतु करदे इह तां किसी कवि की बाणी है, इस तरह की गल नहीं है। महाराज दसवें पातशाह लिखवाउंदे ने आप कृपा करके। ये आपां थोड़ा जिहा अगे चल लईए, यह प्रमाण अपने सामने आप ही आ जाएगा। एक कवि जिहड़ा आएगा महाराज के पास, जिहड़ा ये दसवें पातशाह नूं कहेगा कि महाराज किथे किसे नूं कविता आउंदी है, जिहड़ा तुहाडे कोल आ जांदा है, जिहड़ा तुहाडा नाम भी लै लैंदा है, उहनूं कविता रचनी आ जांदी है। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने कह के लिखवाइया। यह नहीं हुंदा कि महाराज आप कलम पकड़न ते लिखण। अगे तां हुण जिवें कोई अज दे युग विच बंदा यह कहे कि गुरु ग्रंथ साहिब दसवें पातशाह ने आप तां नहीं लिखिया दमदमा साहिब, यह तां भाई मनी सिंह ने लिखिया, एवें लोकां च शंका ही पाउणी है। लो शंका पा दिंदे आपां हुण, शंका दी कीहड़ी गल है, शंका खड़ी वी पहलां वी तां भाई गुरदास जी ने गुरु ग्रंथ साहिब दा सरूप लिखिया, यह तां गुरु अर्जन देव जी ने लिखिया हैगा। इउं लोकां जिवें मर्जी शंका खड़ी कर दिओ, दसवें पातशाह कोई भी चीज नूं बोलदे तां आप ही रहे ने भई इहनूं ऐं लिखणा, इहनूं ऐं लिखणा। उहनां कवियां नूं वडियाई दे दित्ती, चंगा भाई इह तूं लिख। इस तरह सतगुरु महाराज ने बहुत सारियां जिहड़ियां चीजां ने ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਹਨ।
1: ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸਭਾ ਲਗਾਏ ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਮਾਂ ਦੁੱਤ ਪਾਏ।
0: ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਸਭਾ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਦੇ ਰਹੇ।
1: ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੱਲ ਕਰ ਤੈ ਆਇਓ ਨਿਜ ਵਿਦਿਆ ਹੰਕਾਰ ਵਡਾਇਓ।
0: ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨੀ ਕੋਈ।
1: ਕੀਨ ਸਵਈਆ ਅਰਥ ਛਪਾਇਓ ਅਬ ਲਾਖਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਰਖਾਇਓ।
0: ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਝ ਅਰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖਣ, ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਉਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1: ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੇ ਬੈਠ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਨਿੱਟ ਬਖਾਨੇ।
0: ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ کول بیٹھ گیا کول بیٹھ کے اس طرح بولیا
1: دیش دیش میں راور کیرت جس جس تے سنیت بستیرت
0: تھوڑی جی مہاراج مہما ہے نا بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے دیشاں دیشاں دے وچ ودیشاں دے وچ سمندروں پار تک تہاڈی مہما ہے
1: سب بدیا کے گنی بخانے رہ سبا تمری سنمانے
0: سارے پرکار دی ودیا دے جڑے گنی لوک نے کہے جاندے نے ایک چیز ہے مہاراج کتے سانوں کوئی پوچھدا نہیں ستکار نہیں دندا پر تہاڈی سبا دے وچ آ کے سنیا ہے کہ ہر ایک نوں